0: 都山地灾害与环境研究所研究员苏鹏程介绍了这次泥石流灾害发生的原因和特点。
1: 此次灾害源头发生在中国和尼泊尔剑河流域尼泊尔一侧，在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落，冲刷山体形成巨型泥石流。
0: 据介绍，此次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，灾害爆发突然，洪峰流量大，运行速度快，破坏性强，影响范围广，这也是青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。根据灾害溯源，由于冰岩崩发生区域沟道狭长，海拔垂直落差大，使得冰岩崩蕴含的势能极大，在快速运动过程中，冰岩崩摩擦生热与冲撞产生大量热能，进而形成大量融水，二者混合在沟道内刮铲冰气物等松散物源，并快速向前演进。通过监测发现，此次冰岩崩从发生到冲击我国吉隆口岸仅约6到7分钟左右。与此同时，新闻发布会上还介绍了失联外籍人员的相关情况。经多轮全域摸排、点位清查及口岸逐人核查，目前吉隆县已无外籍游客滞留。目前排查失联外籍人员共计261人，包括尼泊尔104人、印度49人等，共23个国家。中方已向有关国家驻华使馆通报。此外，29号，尼泊尔专家在接受总台记者采访时表示，此次泥石流灾害的始发源头在尼泊尔一侧。
2: हामीले यो म्याप हेर्यौं भने यो लिङ्दे रिभर भनिन्छ, यो नेपाल र चाइनाको बोर्डरको रिभर हो, यो खोला नेपाल र चाइनाको बोर्डर जहाँ रातो देखाइरहेको छ, यो पार्ट नेपाल र नर्दर्न साइड चाहिँ चाइना र यो चाहिँ नेपाल र चाइनाको लिरुङको हाम्रो बोर्डर पोइन्ट हो र यहाँ चाहिँ यो इभेन्ट
3: यो तपाईँले लेखेको
2: यो हामीले यो नेपाल साइडको यो पोइन्ट चाहिँ लिरुङ ग्लेसियर भन्दा माथिको पार्ट हो र यो चाहिँ जहाँबाट रकफल सुरु गर्यो।
0: 目前尼泊尔一侧的灾区道路仍严重受阻，在从加德满都北上通往灾区的唯一主干道上，满载救援物资的车辆正紧急开往灾区。29号晚，尼泊尔警察拉金德拉表示，灾害发生时他在距离尼中边境口岸18公里的地方，因灾情严重，前方的搜救工作进行得非常艰难。此前，尼泊尔财政部长瓦格莱向路透社表示，要完成此次洪灾之后的重建，大约需要40至50亿美元资金。
4: 尼泊尔北部发生大规模泥石流灾害之后，尼泊尔国家减少灾害风险管理局发布了4段视频，通过对比泥石流灾害发生前后尼泊尔境内河流部分沿岸地区的卫星图，显示出这些地区在灾害发生前后的变化。从画面中可以看出，原本的河流沿岸大片地区在泥石流灾害发生之后被淤泥所覆盖，当地部分村庄也遭到了严重破坏。
5: 我们的网友啊也是非常的关注这场泥石流灾害，大家呢是不约而同的发出了这样的提问，说这次泥石流为何来得如此猛烈，高山峡谷当中的救援又面临着什么样的困难呢？我们来听一听自然资源部地质灾害技术指导中心的正高级工程师陈红旗的分析。
6: 这是一起高位的冰崩所引发的碎屑流、泥石流到洪流，是一个复合链式的一个灾害。它的能量之所以这么大，速度位之所以这么高，第一个方面是因为它的重力落差大，它的势能就会转化成动能， 同时在它的行进的过程中